ही जहां करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला प्रभुर रहिया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो।

सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पमह विच बंदी वेखण कौ दीदार मुसलमाना सिफत शरीयत

और पावड़ी, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखे ओन कर प्रगट आग सुनाया। सतगुर मिलिया है सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया।

0: इतनी हाजरी प्रवान करते हुए असीस बख्शियो भुला चुका दी खीमा गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद सिंह जी आप जी नू पितृ गुरबाणी कीर्तन लाइन जोड़ रहे सन। भाई जसपाल सिंह जी श्री पाउंटा साहब जी वाले का कीर्तनी जथा भाई साहब जथे बहुत बहुत धनवाद। हम भाई साहब भाई गुरु बलदेव सिंह जी बुलंदपुरी हजूरी रागी श्री दरबार साहब जी वाले का कीर्तनी जथा आप जी कीर्तन लाइन जोड़न गए पासों प्यार से सरण करो जी। आने वाले आत्मा सवेरे गुरुद्वारा साहब विखे निशान साहब की चोला साहब की सेवा होगी। ऐतवार वाले दिन ही जो कि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे संपूर्णता दिवस हैं। मंगलवार 1 तरीक 1 सितंबर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पहला प्रकाश दिहाड़ा है। इस संबंध में ही दीवान सजनगे। ऐतवार दीवान शाम के दीवान सिमरन इस संबंध होणगे। शाम नूं 5 बजे श्री अखंड साहब ऐतवार रखे जाएंगे। इस संबंध में ही मंगलवार को शाम को 5 बजे संपूर्णता 5 से 6 कीर्तन 6 बजे रहरा सहित पाठ और दीवान प्रारंभ होंगे। इस संबंध में आप जी ने सारे दीवाना हाजरी भरनी जी बाहर जो कि शनिवार तक वी आर शो जो कि सच्चा सौदा धन गुरु नानक साहब महाराज नाल सप की छां करनी उस जो दिखाया जा रहा है। शाम यह समा रोजाना ही 6 तो रात 10 बजे तक है। आप जी जरूर वेखना जी। हुण कीर्तन जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगता ने शाम दे दवाना में हारी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त किए हैं। सतगुरु साहब जी रहमत करन सब दी दर हाजरी प्रवान करन दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा जमल चाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विदाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी। आनंद कर है तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंचवा ताती बावन लग गई पार। ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगा न पाई। सत गर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाव। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पई प्रभ पे सहाई। सलोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। अणा हो अणा तू अणह छुट्ट है निकट न जाई हो दूत। श्लोक महला पंचवा। मन मह चितव चितवनी उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया करते का होए बीचारो। तित कर गाव हो सोहिला सिवरे हो सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निर्भाव का सोहिला। हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल। देहो सज्जन असीसड़िया जेहो वै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पहुचा सदले नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक सेधे आवन। राग आसा महला पहला छय घर छय गुर छय उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विश्वे चस्या कड़िया पहरा थित्ती वारी माह हुआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। रागत नासरी महला पहला गगन मै थाल। रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे काओ। सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे। आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंको होए जाते तेरै नाय वासा। राग गौड़ी पूर्बी महला चौथा काम क्रोध नगर भ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे। कर साधु अंजुली पुन वड्डा हे कर डंडाओत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्बी महला पंचवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। ਆਵਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਕਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹੁ।

0: लाल अली मेन है। एक इथे लाने
1: नहीं
0: नहीं एक इधर एक इथे ऐसा ना एक इथे भी लाने एक इथे भी लाने।

सुकनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देनहार प्रभ छोड़काय लागे आन सुवाए नानक कहू ना सी जई बिन नाम पत जाए अष्टपदी दस वसूले पाछे पावे एक बस्त कान बिखोड़ गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहू मन बुठा जिस जन बना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंध शापनी दे राज खात पीत बरते अंध उलास अपनी अमान कश बहुरशाल या ज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आगे राख है प्रभु की आज्ञा मान माथ है उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दया।

अरविंद ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे ना जाए अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित गौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न बार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता।

सुखोय तस्का नाम र कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभु सोहे नानक विघ्न लागे कोय उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लय जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिनसे सब संग चरण चलो मार्गो बिंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म सर्व नर कथा हर दरगे नानक ऊजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनमंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक बछाने तुतकियो सोजी जाने नाम संग जसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुरप्रसाद अपने आप सुजे तसकी जानो तृष्णा बुझे सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर दिन रह तन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक उपर जिस जन की आसा तिसकी घटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मान चित आवे सो संत सुहेला नहीं डरावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेवको किसते डरा जैसा सत ऐसा दृष्ट आया अपने कार जमे आप समाया सोदत सोदत सोदत सिज्या गुरप्रसाद तत् सब बुझया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सही स्थूल नय कि जन्मे न किस मरिया बन चलते आप ही कराए आवन जाऊं दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी तारे सब श्रेष्ठ आप ही आप सगल में आप अनुग जुगत रज था उथाप अविनाशी नायक सखंड धारण धार्यो ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सोभावंद सगल संसार द्रेदन मंद प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दूंग बिसारन अभे मेले कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बड़भाग नाम जपत पावे बिसराम नानक तिन पुर को उत्तम कर मान जो किश करा सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वै सोए करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना स्थिति जित समाये समाये ओए सुख निधान उन्हों बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभु जन एक हो जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिसे बिरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभ आपे आप

नानक सो सेवक गुरु की मतले बीस बिस्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की कथा जाने सो सतगुर हृदय हर नाम अनकबार गुरु को बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सह सन बनया ना जाइये नानक ऐसा गुर बटभागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसद चरण गत निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करन आगा ने मन संतोखा तुम बतिया ने पूरा गुरख्यो जाका मंत्र अमर दृष्ट पेखे वे संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावित सिलय मिलाए जेह बाय गुसत नेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम अगोचर प्राप निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई तागी कीमत किने ना पाई अनक भगत बंदनित करहै चरण कमल हृदय सिमरे सतबलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हरस पावे जन गोए अमृत पीबे अमृत सोह इस पुरखा नाही कदे बिना जाके मन प्रगटे गुंतास आठ वैर हर का नाम ले सच दे सेवको दे मोह माया के संग नाले मन में राखे हर हरे अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तैते नासे तब तमाय ठांड वरताई अनंत भय दुख नाठे पाए जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण मदेसे पाव चुका निर्भय बसे सगल ब्याद मंते खाय नसे जिसका साथ कृपा धारी सा संग जप ना बिरारी तिस पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अभरे चरित प्रभ आ बनाए अपनी कीमत या बे पाए हर बिन दूजा ना ही कोय सर्व निरंतर एको सोए ओद बोध रव्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी गलतारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक तानु सार अष्टपदि संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कान सो परम समृद कर गहो नाम अरवासे तन संचो भगवान संजना का निर्मल मंथ एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता में सो तन हर सेवा ते पाम जिस सुख को नित बाँचे मी सो सुख साधु संग परी जिस शोभा को करे परी करनी सा शोभा बजर की सरणियन को बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अबखदलाए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दरगे प्रमाण मन प्रबुद्ध हर के नाय दय दिस्तावते आवर ठाए तागो बिघन न लागे कोय जागे हृदय बसे हर सोए गलता थी ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख भाव पवन से पूर्ण व्यास भगत भया तम मृगा जगर जाय बसे बनासी गहरान काटी जम्फासी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म गाओ हे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छूट नारे सिमरन सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मन संधान फल पाए संगना चाल तेरे तना तुम क्या लुटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता अंते कह हो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार अंते कह हो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिन दिए तस बजे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातोले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन बाहे जन्म जन्म के गल बिख जाहे आप जपो अबरा नाम जपाबो सुनत कहत रहत गत बाबो सार पुछ सतर को नाम सह सुभाए नान गुनगा।

अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टेता पाप तब कहते होता जब तारी अपन सुन्न समाद तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो के कहाँ किसो पद ब्रह्म अपन के लावर तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभु केवल तनि तब बंद मुक्त कहो किसको घनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कह कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धराए तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा तब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल क्षेत्र लगत गौ गीस जय जो सुरभि जो संग समाव तय किसे भूख मंत्र बताव करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब गमन माय बाप मित्र सुत पाई जय सर्वकलापे प्रवीण तय वेद देव कहा गौ जीन जब अपने आप उतार है तो सगन अपसगन कहा विचार है जय आपनु जापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्मर विस्माद नानक अपनी कत जानू आप जय अशल अशेद अभे समाया उहां किसे ब्याप दमाया आपस गुआ पे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जय के एक एक भगवंता तय कौन अचंत किस लागे चिंता जी अपने आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेन दूजते उचा नानक आपस को आपे पहुचा जय

ब्रह्मसोय ओतरमंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जग तराया जन आवन का सुभाव

दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन अमरीक लाले रतन सुंद कमावत होत उदार आवतरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल मांत के माथे नान कुदरे तन कह साथे सरन जोग सुन सरणी आये कर कृपा प्रभ आप मिलाये मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवा की सेव आल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिसमन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊज पाए स्थान बौर न होवे आमन जान अर्तन घाट चले सन जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रद नव रिद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जपै मन कोय सब जुग में तागीगत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट प्राद सात संग मिटै संत कृपाते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रपाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम माय समानी दुख रोग बिन से भरम साध नाम निर्मलता के कर्म

सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ निरखी सुर जुग जुग वे दाले गावे मोहनिया मन मोहन सुर गाव मश पयाले।

रजेश्वरं प्रमृद्धे नमो सहस्रपाने नमो वस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भुगते

अपार सर्व विश्व विरचि स्वयं पव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुख आदेश धर्म धाम सो परम

अखंड अलिस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडड भाडय चाचरी शांत व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नामे कामे प्रजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

पवित्राय पार्थि से आदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छेद देशे क्या भेज पेशे क्या गांज कर्म है क्या पांज परम है क्या भेज लोक कै क्या देत शोक कै क्या भूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है

के सर्वं कलिह के सर्वं दलिह के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पहुन के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश

भगवती शांत वे प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सल सलाम है संभातल कलाम है के सहब दिमाग है के हुसनल चिराग है।

प्रसाद मौन मान प्रणाम गुण गान मुदाम अर बर गांज हर नर पर भांज आन गान प्रणाम मौन मान सलाम हर नर अखंड वर नर अमांड यन भवनास हे मौन मान प्रकाश हे गुण गान प्रणाम जल थल मुदाम अण सिंह अंग आसने अपहंग उपमाम पार गत में ते उदार जल थल अमांड देश वैसे अभंड जल थल महंत देश वैस बेअंत अन भव अनास त्रित धर तु रास आजान बाहु एक कै सदाहु ओंकार आद कसनी अनाद खल।

हर बोल मना शांत वे प्रसाद करनाले है हर काले है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्वे उबारण है धृत के धरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड सह खल

रेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे लेखे पजहं प्रयाशंद निबाहतर प्रनामे समाहतर प्रनासे अगंजल नामे समाहतर निवासे निकामं बेपूते समाहतर स्वरूपे कुकर्मं प्रनासी सुधर्मं बेपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल करींदा समाहतर निवासी अजय विभुक्ते गजय गनी में हरियं करियं करीमल ही में चतर चक्रवर्ती ही।

नालेख है। सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साज स्नाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिनते आग जहान दान चलेंगे। वीर अपार बड़े वरिया विचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलेंद मवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़े गड़ाहन के तोल नहार सुबात नहीं चकचार लवैया सैब श्री सबको हिर नायक जाज कनेक सुवेक दिवैया। दानव देव फ्रेंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव थपेंगे था।

पाई। संबद सत्तर सहस बनिध्याय अर्ध सहस पवन तीन कहिध्याय पाद्रव सदी अष्टमी रवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते कुआं तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे माते कन मान्यो सिमरत साह तरबेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो।

0: ठहर जाए सुध।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिबां दी रहमत होई है। आप संगतां ने श्री आसा की वार दे कीर्तन गुरद्वारा साहिब फ्री माउंट तों श्रवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन श्रवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई जसपाल सिंह जी श्री पौंटा साहिब वाले समूह जथेदार, बहुत बहुत धन्नवाद। आओ सतगुरु साहिब जी वालों बख्शिश मुख वाग की कथा आप संगतां नूं श्रवण करवा रहे हैं। सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले। सो आप संगतां नूं बेनती है कि वीकेंड दे प्रोग्राम जो सत्कारयोग संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले, संत बाबा आनंद सिंह जी नानकसर कलेरां वाले, संत बाबा मीहां सिंह जी सियाड़ वाले अते संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडां वाले, उन्हां दी महापुरशां दी याद गुरु घर विखे मनाई जानी है। हर साल दी तरह शुक्रवार नूं संगतां वालों श्री खंड पाठ साहिब आरंभ होणगे। एतवार नूं संपूर्णतावां होणगियां। सो एतवार नूं ही जो जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी उन्हां दे संपूर्णता दिवस हन, उस दिन ही जो निशान साहिब दे चोला साहिब की सेवा भी होनी है। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

बेन बूझे सब खड़ी बंद। आखो सतनाम श्री साहब जी कहिंदे समझ तो बिना जमा दी पुरी विच बन के लै तुरना। तेवें महाराज कहिंदे ने ए प्यारिया गोबर तरन ना जाई, धोती टिका तै जप माली आन मलेशा खाई। दोए धोती वस्त्र कपाट धोती भी पहनी है, टिक्का भी लाया होया, बारला दिखावा कीता होया, जप माली हाथ विच माला भी पकड़ी हुई है। कबीर साहब

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड वैसनहार कूड ही कूड चल रहा है। प्रजा अंधी ज्ञान वेण कूड कुसत मुखो आलाई चेले साज बजाएंगे नचण गुरु बहुत बिद भाई काजी होए कै रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई इस्त्री पुरख है दाम हित भावे आवे कि थाऊ जाई ओ वरत्या पाप सबस जग माई दमड़े ही चाहिए जिथे मर्जी औरत जावे जिथे मर्जी मर्द जावे काजी लोग रिश्वत लेके झूठे कर दे ने सच्चे नु झूठा कर देंदे ने झूठे नु सच्चा कर देंदे ने। साहब जी कहिंदे कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई कखाई दर्थ हुंदा गेरू रंग दी कखाई दर्थ हुंदा कन्नी वाली धोती ओह पहनी हुई है मत्थे ते टिक्का लाया होया है पर हालात की ने अंदर दे हाथ छुरी मन रूपी हाथ विच छुरी पकड़ी हुई है कल काती राजे कसाई जगत कसाई पातशाह जी कहिंदे जगत विच कसाईयां वाले कर्म करिया है नील बस्तर होवे परवान नीले बस्तर पहन के काजी जड़ा परमानीक हो रहा है मलेश धान ले पूज है पुराण जिन्हां दी मलेश मई मिलती है उन्हां दा धान लेके ते पूजा पुराणा दी करदा है आपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना कलमा करके पड़े कटिया होया बकरा जड़ा है कुठा महाराज कहिंदे उह खांदे ने मास तां खाना नहीं चाहिदा जित जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत कबीर साहब जी ने एवें थोड़ी मोल कह दते ने कबीर खूब खाना खीचरी जामे अमृत लोन हेरा रोटी कारण है गला कटावे कौन साडे दंद किहो जे ने ये मास खाण वाले थोड़ी ने ये प्रशादा छकन वाले ने शेर दे दंद वेखो बघियाड़ दे दंद वेखो वो तिखे हुंदे ने बिल्ले दे दंद वेखो वो तिखे हुंदे ने मनुख दे दंद चौरे चौरासे चौरे चौड़े हुंदे ने ये प्रशादा छकन वाले ने ऐसियां वस्तुआं खाण वाले नहीं है। साहब जी कहिंदे चौके उपर किसे ना जाना ते कहिंदे जी साडा चौका पवित्र हो जाए इत्थे कोई जावे ना जिवें पहला बोल मैं तुहाडे नाल सांझे कर लेने देख चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार कारा लकीरां तां खड़ियां ने पर शरीर विच तां झूठ है जबान ते झूठ है कन्ना विच तां झूठ है शरीर विच कूड़ भरिया होया है ते सोच उत्थे किथे रह जांदी है मत पिटै वे मत पिटै भई परा हो जाओ परा छूत जाना जे अपवित्रता हो जानी जे मेरे बाप

0: अगन माय होमत परान न्योली कर्म करे बो आसन
1: जय मार संजम अथ साधन
0: निमक निमक कर सीर कटावे हर के नाम संसर कछ नाहे
1: नान गुरमुख नाम जात गत।

0: जय प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी
1: प्रभु को कहू नाम सारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: रात प्रोही प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सत से ते आई।

0: साध की शोभा ब्रह्मा समानी,
1: साध के संग गोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर भूले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध के संग मनोहर बहन,
1: साध के संग ना कथू टावे,
0: साध संग सत मन पावे,
1: साध के संग माया ते पिन,
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न,
1: साध

0: अमृत गुण गायन
1: साध के संग सरब थान गम
0: दान साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: भसन पेटत होत निहाल
1: साध के संग कलोखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहा उहा सोहेला
0: साध संग बिछरत हर

0: कई कोट नर्क स्वर्ग नवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट भोजनी फिरे
1: कई कोट बैठक ही खाए
0: कई कोट काले थक पाए
1: कई कोट किए तनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जय जय पाणा तै तै राखे
0: नानक सब कुछ प्रभु के

0: कबहू अप कीरत मैं आवे
1: कबहू पला पला कहावे
0: जो प्रभ राखे तिम ही रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहू होए पंडित करे बखियान
1: कबहू मोह तारी लावे ध्यान
0: कबहू तड़ तीरत स्नान
1: कबहू से साधक मुख ज्ञान
0: कबहू कीट हंस पतंग होए जिया
1: मानक जौन पर मैं परमिया
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभ